0: हेलो,
1: नाम क्या है आपका?
0: गुड मॉर्निंग मैम।
1: नाम क्या है आपका?
0: संजमीला।
2: कहाँ से बात कर रहे
0: हैं? गंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ये है ना गदर मूवी में।
2: गदर मूवी का?
0: हाँ, जो उड़ जा काली कौवा तेरे।
2: हाँ जी, हाँ जी,
0: ये
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: नाम आलोक जाट।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हैं? गंगापुर सिटी से।
1: कैसे नंबर
0: ये कहा है तेरे नैनो में? ये

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है?
1: साक्षी सैनी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो साक्षी जी?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: उसमें उतार वगैरह
2: शंगर के लकड़ी वा परफेक्ट कतल के हो रे।

0: अखिलेश मीना
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मैं यहाँ से आदर्श नगर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सैयारा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं, फरमाइश करेगा।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 12:38 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों मिलते हैं थोड़ी ही देर में ब्रेक के बाद 1 बजे नए तरह के कार्यक्रमों के साथ।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल 9th क्लास। रिसेंटली मैंने प्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए डीएस से जुड़कर अपने बेहतर भविष्य।
3: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है, 1 बज चुका है। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइस। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहे तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल।

0: तू बच के रह।
1: सुनते रहे। क्या ये सच है या कोई रहस्य? क्या आपने कभी सुना है कि एक पूरा गांव रातों रात जमीन में समा गया हो? ये कोई कल्पना नहीं, उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर जिले की स्थित बकीरा झील की सच्ची कहानी है, जिसे पहले मोती झील के नाम से जाना जाता था। और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस झील की जगह पहले एक बड़ा गाँव हुआ करता था, लेकिन पाप और अत्याचार इतना बढ़ गया था कि एक रात में पूरा गांव जमीन में समा गया और आज वहां एक विशाल झील है। ना भूकंप आया था, ना कोई सुनामी, फिर भी अगली सुबह वहां कुछ नहीं बचा सिवाय पानी के। ये कोई लोक कथा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर जिले की एक रहस्यमय और चौंकाने वाली सच्चाई है। एक गाँव जो अब बखीरा झील बन चुका है, क्या हुआ उस रात? क्यों धस गया वो गाँव? क्या ये सच है या सिर्फ एक पुरानी कहानी? चलिए जानते हैं इस अनोखी कहानी के पीछे का रहस्य। एक समय की बात है, जहां आज बखीरा झील लहराती है, वहां कभी एक गांव हुआ करता था। लोग बसते थे, खेत थे, घर थे और जिंदगी चलती थी। लेकिन उस गांव में एक जमींदार भी था जो अत्याचारी, निर्दयी और लोभी था। वह हर किसान को जबरदस्ती अनाज वसूला करता और गरीबों को पीटता और अपनी सत्ता के नशे में चूर रहता। दिन ब दिन गांव अन्याय और अंधकार में डूबता गया। लोग डरते थे लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे, और शायद प्रकृति यह सब चुपचाप देख रही थी। इसी दौरान गांव में एक अजीब सी घटना होने लगी। एक बिल्ली हर रोज अपने बच्चों को लेकर गांव से बाहर जाती। ये देखकर गांव का एक समझदार पंडित चौंक गया। जानवरों को अपने अनहोनी का आभास पहले से ही हो जाता था, ये कहावत उसके मन में गूंजने लगी। उसने गांव वालों को चेताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार पंडित ने गांव छोड़ने का फैसला किया, और उसी रात आसमान एकदम साफ था, न कोई तूफान न कोई आंधी, लेकिन आधी रात के बाद जमीन कांपने लगी। धीरे धीरे गांव मिट्टी में खिसकने लगी और फिर अचानक पूरा गांव, घर, मंदिर, खेत, लोग, सब कुछ जमीन में समा गया। सुबह जब आसपास में लोग पहुंचे तो वहां सिर्फ पानी ही था। गांव की जगह झील बन चुकी थी, गहरी, रहस्यमय और शांत। कहते हैं विनाश से सिर्फ दो प्राणी बचे, वही पंडित जिसने खतरा भांप लिया था और वही बिल्लियों जो हर रात अपने बच्चे को सुरक्षित जगह ले जाती। लोग आज भी मानते हैं कि दोनों उस रात के साक्षी थे, और ये कहानी हमें गहरा संदेश देती है। जब पाप और अत्याचार हद से बढ़ जाता है तो प्रकृति भी अपना न्याय करती है। आज की बखीरा झील एक विशाल और सुंदर झील है। यह झील न सिर्फ एक प्रकृति का चमत्कार है, बल्कि सैकड़ों विदेशी पक्षियों का घर भी बन चुकी है। प्रत्येक वर्ष साइबेरिया और यूरोप से काफी पक्षी आते हैं। कभी कभी ने इंसानों ने फिर से अपना लालच दिखाया, शिकार करने लगे, लेकिन सरकार ने इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, और तब से झील फिर से अपने जीवन से भर गई है। एक समय था जब ये झील पूरी तरह से सूख गई थी, लेकिन अब ये कभी नहीं सूखती। कहते हैं इस झील की गहराइयों में अब भी उस डूबे हुए गांव की कहानी दबी हुई है। तो क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में पाप का अंत था ये झील? ये सवाल आज भी लोगों के दिल में गूंजता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है सचेत रहना, सही समय पर निर्णय लेना और प्रकृति के संकेतों को समझना। क्योंकि जब अन्याय और लालच बढ़ जाता है तो लोग अंत भी निश्चित होता है। अगर आपको ये कहानी

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रेयर फैक्ट्स में। वीडियो में आज हम बात करेंगे चिल्का झील के बारे में, जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा के समुद्री अप्रवाही जल से बनी है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। चिल्का झील को चिलिका झील के नाम से भी जाना जाता है। चिल्का झील उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में नाशपाती के आकार में पूरे जिले में फैली है। दोस्तों, चिल्का झील 70 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है। चिल्का झील समुद्र का ही एक भाग है, जो मिट्टियों के जमा होने के कारण समुद्र से अलग दिखती है। चिल्का झील महानदी द्वारा लाई गई मिट्टियों द्वारा बनी है। दिसंबर से जून तक चिल्का झील का जल खारा होता है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील का जल मीठा होता है। चिल्का झील की औसत गहराई 3 मीटर है। दोस्तों, चिल्का झील में 132 गांव में रह रहे 1,50,000 मछुआरों की आजीविका का साधन चलता है। इस खाड़ी में लगभग 160 प्रजातियों के पक्षी भी पाए जाते हैं। लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरियों तक तय कर प्रवासी पक्षियां भी चिल्का झील पहुंचते हैं। 1981 में चिल्का झील को रामसर घोषणा पत्र के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में चुना गया। इस महत्व वाली यह भारत की पहली झील थी। एक सर्वेक्षण के अनुसार यह 45% भूमि, 32% जल और पक्षी तथा यहाँ पर 23% बगुले भी हैं। यह झील में 14 प्रकार के रेप्टाइल्स का भी निवास स्थान है। यह लगभग 152 संकटग्रस्त एवं रेवर इरावती डॉल्फिनों का भी घर है। यहाँ से 37 प्रकार की सरीसृपों और उभयचरों का निवास भी यहाँ पे माना जाता है। ये एक 32 किलोमीटर लंबी संकरी नहर से बंगाल की खाड़ी से भी जोड़ा जाता है। लघु शैवाल, समुद्री घास, समुद्री बीज, मछलियाँ, झींगा, केकड़ा आदि चिल्का झील के खारे पानी में फलने फूलने वाले जीव है। हर वर्ष 16 लाख मेट्रिक टन अवसाद चिल्का झील के किनारे जमा की जाती है। इस झील में 6 विशाल द्वीप के साथ बहुत सारे अन्य द्वीप भी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना।

89.6 DSFM पे। यहाँ सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: जो मनोरंजन का सरताज है।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडीइंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
2: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन।

दोस्तों वक्त हो चुका है 2:00। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जी पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहीं तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बोली विसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने प्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस अकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए आई आई

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने प्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जी पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी साथ सुने थे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक 89.6 रेडियो डीएस पर।

अंधेरे को अंधेरा नहीं सिर्फ रोशनी मिटा सकती है, नफरत को नफरत नहीं सिर्फ प्यार मिटा सकता है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: Thank you.

0: बरसों हो गए दिल से दिल तक 89.6 साथ नहीं हो तुम FMB.
1: फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम. क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है. ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी.

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माई वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए पागल नहीं था, तुम भी।
4: रिसेंटली मैंने प्रेस साइंस

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, में आपका रेडियो दोस्त ऋषि।

सुबह तो चुका है, 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त हरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस। और आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों, हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है। आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो DS पर।

0: मैम नमस्ते।
1: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम शाम है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगी? ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: आपका?
1: सागर बोल रहा हूँ, बसेरा मैदान से।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना है इतना सिस्टम मुझ पर ढाया करो।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: नादान दीवाने, तरस खा जिंदगानी पर, अरे नादान परवाने, रहम था नौजवानी पर, ना ले तू नाम लैला का, नहीं तो जान जाएगी।
1: ना

0: आदरणीय दीदी सादर सा प्रेम प्यार है नमस्कार।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
0: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
1: सर मैं ठीक हूँ। बारिश हो रही है आज तो बहुत तेज गंगा
0: जी। हमारे मथुरा वृंदावन भी आज रात को 1:30 बजे से लेके सुबह 4-5 बजे तक बारिश होती रही और 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रिमझिम फुहार पड़ती रही, लेकिन अभी धूप खिली हुई है।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़िया नदिया किनारे, फिल्म कुर्बान से।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो को कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम क्या है आपका?
1: विराट गोमन।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: वो कल का गाना चला दो, मैं रोज सुनना चाहता हूँ, आप चलाते नहीं हो, मैं भी चलाती हूँ।
0: कौन सा गाना?
1: बलब में नस नस किया दुख है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो,

0: दिल कर रहे हैं आवाज़ की।
1: हाँ सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना तो बढ़िया से करी सुनानी है।
1: हाँ जी बताइए। ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।

0: हेलो
1: हेलो बहनी, नमस्कार जी।
0: नमस्ते, तो नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आज की शाम आपके नाम।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपके।

0: नमस्ते सर।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: खंडी राम जिगर बोल रहा हूँ।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: पटना ए हसीनो ले मैं आ गया।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश करिएगा।
0: थैंक यू सर।
1: वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: विवेक मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: नशिया कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: कहाँ से हैरान है, मन परेशान है।
1: कौन सा?
0: मन परेशान है।
1: ओके, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो
1: आपका
0: गांधी
1: कौन सी बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी
1: सुनना चाहोगे?
0: चन्ना चन्ना
1: चन्ना

0: का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतल
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतल
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: गंगापुर सिटी के घर पर
2: रेडियो डी एस
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतल
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी।

0: का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरती पर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS

0: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतल
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS

तेरे बिना मेरी जिंदगी एक अधूरी कहानी थी, उसका मैं आज आखिरी पन्ना लिख रही हूँ। अलविदा।

0: हाँ जी मैम।
1: ओए छोटू की कह रहे थी तू ऑस्ट्रेलिया चला गया?
0: थोड़ी होने वाली नूनू मिलना आया सी। आ जाऊंगा परसों।
1: बेटा तेनू पता तो है अपने इत्थे ब्याह तो पहले मिलना ठीक नहीं।
0: चंगा संताली वाले हो, कहता रहा कि आ जाऊंगा मिलके।
1: हाँ
0: जी मां पहुंच गया।
1: चल जल्दी आ जी घरे।
0: आ जाऊंगा परसों। चंगा।

0: जिंदगी दे विच दिन आखरी है मेरा, आज तो बाद तेनू कदे चेहरा देखना नहीं मेरा। मैं इश्क कीता सी ते तू वपार कीता सी, गलती तेरी नहीं गलती ता मेरी सी, क्योंकि तू नहीं मैं तेनू प्यार कीता सी।
1: एक चीज दिखावा
2: मेरे लिए?
1: हाँ चल अखा बंद कर। ए मैं दूसरी औरत दे अपनी जिंदगी चलाया।
2: दूसरी?
1: हाँ
2: ते पहली कौन सी?
1: मेरी बेबे।

कहां थे?

0: patria o muerte.
1: Chore chale under.
2: पर मैं नू बताऊं भूषण सिंह घने साल हो लिए इन दोनों आगे बैरना है।
3: तू ध्यान रखिए,
2: अगर आज की पार्टी में कुछ पंगा होया तो तेरे हाथ से जींद की सीट गई।

0: मदद करने के बजाय आप हमें ऐसे छोड़कर जा रहे हैं।
1: देखिए 20 दिन से हम आपकी मदद ही कर रहे हैं, हम आपको जानते भी नहीं हैं और ना ही आप हमें अपने बारे में कुछ बता रही हैं। यहाँ से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते अपने घर, ये रखिए, ये आपकी हिफाजत करेगा।
0: मैं आपके घर तक आपके साथ चलूं, उसके आगे मैं खुद चली जाऊंगी।

जो नजर मेरी विच बेवफा हर गल उन्हां नाल जा जुड़दी नी मैं जोर ला लिया कमली नूं मेरी कलम मोड़िया नहीं मुड़दी नी मैं दुनिया फैन बना लैनी तू भी ना दिल चों हेट करी मैं थोड़ा डेटा पुछ पुछ रखणगे मेरे अगले गाणियां दी वेट करी।

0: हाँ जी, किवें लग्या तुहानूं इह गाणा? लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो ते मेरे डेब्यू ट्रैक विदाउट यू नूं वी जरूर सुनियो ते मेरे नवे नवे गाने सुनने दे लई गीत एमपी3 दा चैनल सबसक्राइब करो। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।